बातें कहने जाता हूँ, इतने स्लो गानों पर भी आप लोग ताली बजा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये गाने इतने स्लो हैं, इतने मीठे हैं कि हमेशा ऐसे सुनने वाले नहीं मिलते कि इनकी तारीफ की जाए या इनकी इनको ताली मिले। बट रोटरडैम और हॉलैंड के जो लोग हैं वो सुनने वाले हैं, इसलिए इन गानों पर ताली मिलती है। थैंक यू वेरी मच।

मैं इतनी बार यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन हमेशा मैंने अपने गाने गाए हैं। इस बार पहली बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर तरह के गाने आए, हर तरह के गाने सुनाए जाएं। हमारे लेजेंड्स हैं, जो मेरे गुरु हैं, जिन्हें मैं मानता हूँ, जिसे सीखता आया हूँ। अभी तक मैंने किशोर दा मुकेश जी की बात कर ली, अब बारी आती है मोहम्मद रफी साहब।

फैंटास्टिक, ये ऑडियंस इज फैंटास्टिक। ये एक यहाँ पर गुलाब पड़ा है, मुझे तो किसी ने गुलाब दिया ही नहीं, तो मैं ही दे देता हूँ। कहाँ गया? व्हाट अ बैड थ्रो। जी जी जी जी अभी हाँ उनको ले गया, अभी मैं कहता हूँ।

ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं
혼내요 내요 혼내요 내요

0: அப்படி கேக்குறீங்க, அப்படி விதம் பண்ண தலைய 1 2 3 4
1: वो तुझे लागे ना नजरिया।
0: अब आपकी तालियों की ताल हो मेरी आवाज, वेरी गुड।

0: hear, feel the sound of NTN Radio 89.1 FM.
1: इस हसीन तोहफे के बाद अब बारी है एक हसीन गाने की, जिसकी फिल्म का नाम है
2: ओ बल्ले बल्ले सरदार जी, ठीक है तुम सा नहीं देखा। हाँ तो लीजिए तशरीफ रखिए, अब आपकी फरमाइश पर पेशे खिदमत है। फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा। बोल हैं यूं तो हमने लाख हसीन देखे हैं, लीजिए सरदार जी तुम सा नहीं देखा।

हाँ तो लीजिए, साइंस का जमाना है। यूं तो बहुत सी मेडिसिन, बहुत सी दवाएं ईजाद हो चुकी हैं जो आदमी की जवानी को बरकरार रखती हैं या वापस लाने में कामयाब हुई हैं, लेकिन ये गाना जो आप सुनेंगे उसके लिए ऐसी बात मशहूर है या बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसके सुनने के बाद बहुत से लोगों पर जवानी वापस आ जाती है। फिल्म का नाम है जंगली और गाने के बोल हैं, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

महबूबा महबूबा। आ लीजिए अब पेशे खिदमत है फिल्म सूरज का वो कामयाब गाना जिसके बोल हैं बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है।

हाँ जरूर जरूर लीजिए, इत्मीनान रखिए, लेकिन सभी की फरमाइशें एक साथ पेश करना बड़ा मुश्किल है। आप ही लोगों में से बहुत से लोगों की फरमाइश पर आप सुनेंगे एक दो गाना, जिसके लिए स्टेज पर आ रही हैं कृष्णा मुखर्जी। हाँ तो लीजिए, मोहम्मद रफी साहब और कृष्णा मुखर्जी मिलकर पेश कर रहे हैं फिल्म तीसरी मंजिल का मशहूर दो गाना, जिसके बोल हैं आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा।